को लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। केडीसी जनरल अस्पताल, सम्पर्क नम्बर 01-4985-910, 01-4985-911। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।

0: धुप कहूँ और वो माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: शहीद मेमोरियल अस्पताल प्राली धारिंग प्रवाह होने सेवा
3: 24 घंटा इमर्जेन्सी फार्मेसी सेवा
2: अनुभवी दक्ष चिकित्सक ओपीडी सेवा
3: हरेक दिन बिहान र बेलुका उपलब्ध हुने विशेषज्ञ सेवाहरू हाड़ जोड़ने सेवा बाल रोग सेवा जनरल फिजिशियन
2: हरेक शनिवार महिला तथा स्त्री रोग संबंधी सेवा र महिनाको पहिलो शनिवार मानसिक रोग संबंधी सेवा
3: शनिवार काठमाडौँबाट आउनु हुने रेडियोलोजिस्ट डाक्टरबाट जिल्लामा पहिलो अत्याधुनिक रंगीन 5D मेसिनबाट गर्भवतीको एनमली स्क्यान स्तन तथा शरीर को जुनसुकै भाग में रहकर गाथा गुटी को स्कैन र थायराइड स्कैन
2: भिडियो एक्सरे सेवा
3: इको सेवा हरेक दिन बिहान र बेलुका
2: ल्याब सेवा सबै किसिमका जाँच गरिने व्यवस्था भएको
3: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल प्राली धादिङ विश्वद्वारा जनहित में जारी संदेश
4: सरकारी शुल्क में निजी अस्पताल में उपचार काठमाडौँ को वसुन्धरा स्थित 100 बेड को मल्टी स्पेशलिटी केडीसी जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि सहज र गुणस्तरीय उपचार अब सरकारी मूल्यमै पाउनुहोस् 24 घंटा आकस्मिक सेवा ओपीडी सेवा शल्यक्रिया सेवा साथै ल्याब एक्सरे अल्ट्रासाउंड इको इंडोस्कोपी लगायत आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् केडीसी जनरल अस्पताल संपर्क नंबर 01-4985-910 01-4985-911 तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।

0: California Extreme Energy Drink.
1: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: गाड़ी दमकल एम्बुलेंस को फोन नंबर जुनसुक समय में चाहे कण टपार वा सबले देखने ठाव में राख
1: सार्वजनिक हित का लागि उज्यालो को अनुरोध।

यसैगरी हामी सुगम सिमेन्ट ले पनि क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्ने हाम्रो वाचा पूरा गर्दै फेरि ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा सुगम सिमेन्ट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज।